आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोह प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है।

ख्याल रखा है, गुरु सूरज के मुआफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद।

राग कल्याण कुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन दी दशा दा बयान कर रहे हन। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

0: मते तुला विसर आचित नाव
1: दौलत दाम दीवान मकान नादान इस नादान बंदे ने सिर तोड़ सिर ते पैर रख के इन्ना सब कुछ बनाया नादान पे मेरा हुक्म हासिल होवे मेरे को चार कोटा भी बढ़िया हो ते फिर इन्हों का गुमान करी बैठा है। वाह वाह एक ने आके कहा धर्मराजा नूं मेरा राज सी वो कहन लगा गलत बात है ये तो तेरा प्यो जदों सी वह भी कहिंदा सी मेरा राज है तेरे प्यो नूं पुछया पे किहदा राज है वो कहिंदा मेरा जदों वह चल गया तो वह तो पिछली पीढ़ी देख लो तेरे दादा भी यही गल कहिंदा सी तेरा पड़दादा भी यही गल कहिंदा सी तेरा नकड़दादा भी यही कहिंदा सी पांच छे पीढ़ियां तो तेनूं गुण आ गए नकड़दादा पड़दादा दादा प्यो तू ये सारे कहिंदे सी मेरा पर तू हुण जा रहा हुण किहदा है हुण किहदा तेरा नहीं नादान ने सारियां बातां कहियां दौलत दाम दीवान मकान नादान गुमान नायक करो एदा गुमान ना करो असीं एदा ही करी जांदे राजा साहब का वचन देखो बरसी मनाउण दा तां फायदा है जे असीं उन्हां दा वचन सुनीए और उन्हां दा वचन मनीए। अगली बात है जी कहिंदे जिहड़े तेरे नाल शरीक जुड़े हो ना तेरे घर वाले तेरे पुत्र धीआं रिश्तेदार गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने पूर्व जन्म के मिले सहयोगी पिछले कर्मां दे जिवें खूह दीआं टिंडां जुड़ियां पईआं ना खाली तुरी जांदीआं भर के आ जांदे खाली तुरी जांदे पानी डुल्ली जांदा ते तेरे पूर्व जन्म के मिले सहयोगी अंते को ना सहाई सहाई वचन मर धन्यवाद मैनू डाउट सी थोड़ा जिहा बहुत मेहरबान ए धीआं पुत्र रिश्तेदार तेरी घरवाली और तू पूर्व जन्म के मिले हुए हो ते अखीर वेले वे किसे ने नहीं जाना जे जाना तो कें जाना जे मात पिता सुत मीत ना भाई

तो जिन्हां ने भी सच्चे दिलों उस परमेश्वर की भगती की उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने अपनी गोदी विच बिठा लिया। जुगो जुग अटल हो गए, अमर हो गए। भगत रविदास जी नूं बचपन तो ही भगती भाव दे नाल परमेश्वर ने बेअंत बख्शिशां कीतियां होईयां सन। आप दा जन्म बेशक चंबियारां दे घर दा सी, पर निरंकार दे घर विच कोई जात पात दी पुछ नहीं, उत्थे तां गुणां दे पुजारी हन, गुणां दी पूजा होनी है। अगे जात ना जोर है, अगे जात नहीं पुछी जानी। हजूर दी बाणी कहंदी है, सब ते उत्तम गणो चंडाला, नानक जह मन बसे गोपाला। जे जात दा नीवा है ते उदे मन विच वस गया है श्री वाहिगुरु, तां ओ सब तो उत्तम है। सब तो उत्तम जाति किस दी है? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। उच्ची जाति किदी है? जेड़ा भाई सास ग्रास मालिक दा

महापुरख त्याग दी मूरत आउंदे हन। सब तो पहला संसार नू, संसार दे मोह नू त्यागना, फिर माया दे मोह नू त्यागना, उस तो बाद फिर प्रतिष्ठा उस्तत निंदा दा त्याग करके ए समुंदर तप के अगे फिर परमेश्वर दा डेरा।

विस्तार किवन किन्हीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया किन्हीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

अंतरूप मंगल सज जाके धर्म थोप सुनिए घर पाके राज में राज योग में जोगी तब में तीसर गस्त में भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।

पर यह भी नहीं पता भी प्रकाश किन्ने बजे भरा करदा साढ़े छे सत बजे की कहोगे गुरु साहब का कमरा होंदिया भी उत्तम क्लास नहीं मिली आखो सतनाम मध्यम छे मध्यम छे ईस्ट मोह नगर किसे घर गए तो 17 कमरे से उन्होंने 250 गज वाली कोठी 300 गज मैं उन्होंने बेनती की भी गुरु साहब का भी कमरा माण नाल कहिंदे हां जी साढ़े घर गुरु साहब का भी कमरा कित्थे प्रकार चौथी मंजिल ते तुहाडे चौथी मंजिल दे कोई कमरा होवे विच एसी वगैरा ना लगा होवे ते गर्मियां दे 6 महीने उत्ते 5 मिंट भी खलोना औखा हुंदा है उत्थे नरादरी हो रही है कि आदर हो रहा है ये ते बाबे नंद सिंह जी तो कुर्बान जाइए जिन्हां ने आके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा करन दी जगत नूं जाच सिखाई ते अपने आप नूं जणाया नहीं कहिंदे मैं ए सिखिया गुरु रामदास दे दर तों ते हजूर साहब तों लई है आखो सतनाम जी किथे प्रकाश कहिंदे चौथी मंजिल ते इष्ट मोहन माता सी 67 साल दी पुछया माता जी तुसी प्रकाश करदे हो रोज सुखासन नहीं काका मेरे ते गोड्यां च दर्द मैं किथे उत्ते जा सकदी आं तुहाडियां नूहां करदियां नहीं काका वो बच्चियां नाल उहनां को किथे समां वी तुहाडे पुत्तर करदे प्रकाश थके टुटे आंदे कहिंदी करियाणे दा काम है थके टुटे हुंदे सारी दिहाड़ी वाकई हुंदी थकावट दास ने खुद 11-12 साल मनियारी दा काम कीता ते उस वेले आ कुड़ता पजामा भी नहीं पाया जाता सी कशहरे बनैन चो ही रहा सी मेहनत बहुत मैं क्या वाकई थके टुटे ते हुंदे कहण लगी थके टुटे आउंदे ने 9 बजे घर सवेरे मसां 7-8 बजे खुलदे 9 बजे फिर दुकाना ते जाना हुंदा उन्हां को किथे समां माता जी तुहाडे गोडे दर्द हुंदे ने नूहां बच्चियां नाल वेल नहीं पुत्र कारोबार तो थके आंदे ते बच्चे ते जे कर नहीं सकदे फिर प्रकाश कौन करदा सुखासन कौन कहिंदे असीं पाठी सिंह रखे ने उह कर जांदे आ प्रकाश भी सुखासन भी असीं सारा परिवार संगरांद वाले दिन उपर मत्था टेक आउंदे आ हुण की कहोगे कि घर गुरु साहिब रखे पर हैगा प्रेम इनू मध्यम च लै आओ भावें थर्ड च लै आओ प्रेम नहीं जे किते बाबे नंद सिंह वर्गे महापुरुष जिन्हां ने कीता ही जिंदगी च प्रेम ते बाबा जी प्रकाश करन दी भी मर्यादा दसदे सी बाबा जी वचन करदे सी भाई जिन्हें प्रकाश करना है इशनान करके सुचे कपड़े पाके ते कहिंदे सी भी गुरु साहब दा जेड़ा कमरे दा बूह है ना उहदे बाहर सतनाम श्री वाहिगुरु दा वाजा दे के गुरु साहब अंदर हाजर नाजर ने अफसर दे कमरे च भी जाना होवे ए नहीं कहिंदे सतनाम वाहिगुरु दा वाजा दे के अदब नाल भी हुण जिवें मैं गुरु नानक दे कमरे च आ गया अदब नाल बाबा जी इत्थों तक दसदे सी सतनाम वाहिगुरु दा वाजा दे के जदों कमरे च आ गए नमस्कार करके खलो के सुनियो जरा प्रकाश करन दी मर्यादा बाबा जी कहिंदे सी इंज कहना इहनूं अरदास कह लो पर अरदास ते आ जाएगी ना दूजी क्योंकि अंदरों बेनती रूपी लफज निकलण खलो के ना तन तन श्री गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब जी वल सच्चे पातशाह जी वल तक के प्यार दे नाल तन तन श्री गुरु नानक देव जी फिर कहना बाबा जी

निवास खालसे मैं हूं करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूं सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अरपाता, खालसा मेरो सुख एलादा।

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा वर्णत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा वर्णत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा एक जरा पर भी, एक छिन पर भी, इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना। या मैं